0: अवतार
1: दर्शन सत सत पेखनहार
0: नाम सत सत जावनहार
1: आप सत सत सब धारी
0: आपे गुण आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभ भक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: पूजनहार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत

0: कब शिव सखत कहो कि मिठाए।
1: आप है आप अपनी जोत तर
0: तब कवन निडर कवन कत डर
1: आप न चलते आप करने हार
0: नानक ठाकुर अगमया पार
1: अवनाशी सुख अपने आसन
0: जन्म मरण को कहा विनाशन
1: पूर्ण करता प्रभु सोए
0: तब जन की त्रास कहो किस होए
1: अवगत गोचर प्रवेका
0: तब चित्र गुप्त किसे पूछ।

लिया उन्हें सारा कुछ ही प्राप्त कर लिया। सो बेनती करा करो गुरु के चरना चा करके भाई सतगुरु रहमत करो नाम ना झोड़िया पर गया। जिन्हें नाम ले लिया उन्हें सारा कुछ ही ले लिया। सो आओ धनवादी हाँ सारी ही संगत का भाई जो समा कढ़ते हो सतगुरु मेहर कर ये जोर ही रख इस तरह जो रहा समा है वह भी पूरा हो जाए। धनवादी हाँ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

गावन तदनो इंद्र इधर आसन बैठे देवत्या दर नाले गावन तदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तदनो साध बिचारे

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टेक नानक मणे माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम पहले

इतनी हाजरी प्रवान करनी पुलचक की खिमा सुभाव हूं आप जी सत्कार जो ग्ञानी अगंत सिंह जी लड़ीवार कथा गुरमत विचारा द्वारा निहाल करे जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

प्यारे खालसा जी नू बख्शो निमाणिया दे मान नेताणिया दे ताम नेहोटिया दी उड़ने आसरिया दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे हजूर अरदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत की आप जी पावन हजूरी विच शाम दे सुंदर दीवान सजे हन सजे हुए दीवाना विच गुरबाणी की कथा विचार कीर्तन छे पौड़ी आनंद साहब का जाप होया कृपा करनी पातशाह जी समुचिया सेवावां निभाउंदिया होया फुल चुग दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कथा कीर्तन का भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां दरों करो नाम दान चढ़दी कला की दात बख्शनी परिवारों में सुख शांति कारोबारों में वादे करने जेलों में बंद गुरसिखा की रिहाई चढ़ती कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ की चढ़ती कला करनी सच्चे पातशाह जीओ अरदास बेनती है संगत वालों भाई कुलबीर सिंह वालों सच्चे पातशाह जीओ जो आप जी ने सच्चे पातशाह आप जी की कृपा सदका जो पढ़ाई पूरी की सच्चे पातशाह मुकम्मल होने आप का शुकराना करद्या हो अरदास बेनती है कृपा करी सच्चे पातशाह जी रहम तां प्रयास रखना चढ़दियां कला बख्शनियां आप दा लख लख वारी शुकराना है सोले बख्शियां खजानियां विचों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजर है करी पाक साल सोज पवित्रा हुण लाभ भोग हर राए आप जी दा सीर प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे श्री मुखवाग दी बख्शिश करो से ही प्यारे मेल जना मिलियां दा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या भई अकाल के सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभु को मिल बोच है

जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ। विसवे चस्या कड़िया पहरा थित्ती बारी माह होवा सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला गगन मैं थाल रव चंद दीपक बने तारे का मंडल जनक मोती। तूप मलयान लो पावन चवरो करे सगल बन राए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे काओ सहस मूरत नना एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह। नानक सारंक होए जाते तेरै नाय वासा। राग गौड़ी पूर्बी महला चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिब मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ। साकत हर रस साध ना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चल है चुबै दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहसोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्बी महला पंचवा करो बिनंती सुनहो मेरे मीता संत टहल की बेला। ईहा खाट चलहो हर लाहा आगै बसन सुहेला। आउद कटै दिन सरैणारे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ। एहो संसार विकार सन से मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिस हे जगाए पी आवै एहो रस अकथ कथा तिन जानी। जा को आए सोई बिहज हो हर गुरते मन है बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

जिनका एक जिस जीव सावे ताकी महिमा गनी न आवे कांकी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ।

दुश्मन ठहराए। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु कै सिमरन अंधन जागै। प्रभु कै सिमरन भावना व्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख ना संतापै। प्रभु का सिमरन साध कै संग, सर्वनदान नानक हर रंग।

प्रभु का सिमरन तीर्थ शनानी, प्रभु का सिमरन दरगाह मानी, प्रभु का सिमरन हुए सो भला, प्रभु का सिमरन सफल फला, से सिमरे जन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभु का सिमरन सबते उच्चा, प्रभु का सिमरन उदरा मोचा, प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझा, प्रभु का सिमरन सबके सुजा, प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माहे समाहे, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से धनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जन आप दयाल्ला, नानक जन की मंगेर वाला, प्रभु को सिमरे से परभकारी, प्रभु को सिमरे तन सदबलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तन सुख बेहावे, प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपाते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरा भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबूना चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन नेचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बेगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रभु मया, नानक तिंजन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन पाए सिद्ध जति दाते, हर सिमरनी चौंकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा।

अंतरजामी अपनी गत में जानो वापे आपन संगा प्रभराते तुमरी उस्त तुमते हुए नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं ऊतम क्रिया सासंग दुर्मत्म लहरिया सगल उद्दम मैं उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा। सगल बानी मैं अमृत बानी हर को दासन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे कटवस हर नाम सरोक। निर्गुण यार ए आन्या सो प्रभ सदा समाल जिन किया ते चीत रख नानक निबिहीना अष्टपदी। रमैया के गुण चेत परानी कमन मूल ते कम दृष्टानी जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अगर में

गुरुदेव अष्टपदी निप्रसाद शक्ति अमृत खाय ठाकुर को रख मन माहे निप्रसाद सुगंधत तन लामे तुसको सिमरत परमगत पावे निप्रसाद बसे सुख मंदर तसे त्याहे सदा मन अंदर निप्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरोत सरसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई है ध्यान जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तसे त्यागत लुभावे जे प्रसाद सुख सेज सोईजै मन आठ पैर तक जस गावीजै जे प्रसाद तु सब को माने मुक्ता को जस रसन मखाने जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगे मान पावे नानक पात सेती कर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावत सराम स्नेही जय प्रसाद उल्ला रहत मन सुख पावे हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छित्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके जय प्रसाद तुझ गोना बहुचै मन सा सिमरो प्रभ उचे

के जो भाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मनो प्रकाश जैसे तरु भरे आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र

ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संहिता ब्रह्मज्ञानी का हुआ चिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभाव ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दर्श प्रभा की पाइय ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइय

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक से प्रणाम आधार अवर पाप समेत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कान सो प्रभ सम्राथ दृढ़ कर हव नामर वाथ ए तन संचो भगवान संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार गुण उड़ता में सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख कुंद बांछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस सुबह को करे परी करनी सा सोभा बज हर की सरणी

रमरसो काचो काचा आभा गमन मिटे प्रभ से बाब त्याग शरण गुरुदेव एवं रतन जन्म गाव हे उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनुग भावना छुटन हारे सिमर सास वेद विचारे हर की भगत गुरु मन लाए मन मंचत नानक फल पाए संगना चाल तेरे तना तू क्या लपटा मैं मूर्ख मना सुत मीत कुटब अर बनता ते कह तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार ते कह कमन छुटकार आ सस्ती रथ सभारी झूठा डम झूठा सारी जिंदिए तुझे नाम बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुरखी बातू ले आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत

हमें मोह परम व्यवहार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की अभ्यान अपन खेल आप कर देखे खेल संकोच तो नानक एक है। जय अभगत भगत आप जय पसरे पासार संत प्रताप दुह पाका आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौत करे आनंद जो

दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारा पे का विस्तार जात स्वभावित सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किछो अपन सो सब जगत परोए जा को प्रभु जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को ना जिस राखे तिस कोई ना मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अबर कहां को जाए सब श्रेक निरंजन राय जी की जुगत जा

पुण्यधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब उपरभुत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहो व्याप परत पाले जीवन बापांत जो जो रचो सो तसे त्याज जिस भावित सिलाए मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंदर विश्वास कर मान्या करनहार नानक एक जानिया जल लागा हर के नाथ सगी आसना बिरथी जाए।

अष्टपदे पूरे गुरुका सुनपदे सार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरा चेंद आस अनित त्यागो तरंग संजना की तूर मन मांगा आप छोड़ बेनती करो सा संग अग्न सागर

है सर्ग है अनिल है अनाद है अज है अजाद है अजन्म है वर्ण है अपूत है अपर्ण है अगाज है अपाज है अचूज है अचाज है

चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपहित हैं अपेह हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं भजंग प्रयात छंद गाधे बाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने स्मृति धाने

त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभग्न त्रिपादे गंजे गादे सुभंग सर्वभागे सो सर्वानुरागे त्रिपुत स्वरूप है अछेद है अछूत है के नरकं प्रनाश है पृथ्वी और प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है बेपुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है बेपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है।

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबह अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साधु संगत जीयो आप सारे विड़पागी हो तनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया उस दी विचार आपा कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो सतगुरां ने पावन फरमान बख्शिया ओ शब्द चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास पिता जी दी पावन रसना तो उच्चारण किया होया। बिलावल राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 799 अते 700 उत्ते 800 उत्ते सुशोभित है। इस पावन शब्द विच जो सतगुरां ने रहौदा बंद बख्शिया उस दे विच फरमाउंदे ने मेरे मन हर गुण हर उचरो। अपने मन नु समझाउण दा जतन दस्या कि दुनिया दे लोको अपने मन नु इस तरह समझाउणा है ये गल समझाउणी है। ऐ मेरे मना उस परमात्मा दे गुणगान करिया कर उस परमात्मा दी सिफत सलाह करिया कर उस परमात्मा दी सिफत सलाह कर।

मेरे भाई मिल हर हर कथा करहो, हर हर नाम बोहित है कल युग खेवट गुर शब्द तरहो। आवो संत मिलहो मेरे भाई,

उत्तम क्यों पाइए उपदेश जन करहो सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत रस मिल अमृत हर रस पियो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखो गुरमत हर रस मीठा लग तिन बिसरे सब बिखरस हो।

0: 마지막 그런 게 또 나와 있었어. 오케이.
1: अच्छा
0: मैं मैंने मिलदी इसमें घरों ला आई और मिलती कभी मिलती नहीं होंगी फिर की करना हम तो बहुत हो गया गद्दी पई कहते चक लो गद्दी पई तो चक लो
1: वैसे गद्दी होती है वो वैसे गद्दी है हड्डी ऊंची हो जाती तो वो उत्ते कितने चढ़ना ऊपर चढ़ना Why, Guru?

0: सुखमनी सुखी अमृत प्रभ नाम
1: भक्त जना के मन विश्राम रहौ
0: प्रभु के सिमरन गर्व नाम से
1: प्रभु के सिमरन दुख जम न से
0: प्रभु के सिमरन काल पर हरे
1: प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे
0: प्रभु सिमरन कछ बिघन न लागे
1: प्रभु के सिमरन आंदन जागे
0: प्रभु के सिमरन भव न व्यापे
1: प्रभु के सिमरन दुख न संतापे
0: प्रभु का सिमरन साध के संग